सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। ओ अल्लाह, सो मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड नाउ दैट वी शुड थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एंड नॉट अदर्स। ओ अल्लाह, एवरीवन इन योर गार्डन इज अ फ्लावर, एवरीवन इज अ फ्लावर, द ओनली थॉर्न इन द गार्डन इज मायसेल्फ। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शिहार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। बहुत दिनों रह चुका निकम्मा, बस अब मुझे काम का बना दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे। मैं कब से हूँ महवे ख्वाब गफलत, बस अब जगा दे, बस अब जगा दे।

मेरा, गुनाह में आलूदा हो रहा है, रुआं रुआं बाल बाल मेरा। ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा। ये आखिरी दिन है जिंदगी के, दुरुस्त कर दे माल मेरा। तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं, उसी में हो इंतकाल मेरा। तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं, तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं, तेरी मोहब्बत में अब जीऊं मैं, इसी में हो इंतकाल मेरा।

रहे तो लब में सवार सब हैं प्यादा मिसले हो बार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ ओ अल्लाह इन योर गार्डन एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल फ्लावर द ओनली थॉर्न इज माई सेल्फ तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूँ मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शिआर में हूँ रहा में बेकार जिंदगी भर बस अब तो

रहे हो क्या गजब, जागो। बहुत सोए बस अब जागो, बस अब जागो। बहुत सोए बस अब जागो।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।

बस एक अगर हूं तो खार में हूं। आई मेंशन दैट दिस इज समथिंग दैट रियली टचेस माय हार्ट। तेरे गुलिस्तान में सब गुल है ओ अल्लाह, इन दिस गार्डन ऑफ योर्स एवरी वन इज अ फ्लावर, एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल रोज, इफ देर इज अ थॉर्न देन इट्स माई सेल्फ। We consider ourselves to be thorns and others to be roses, that we are the ones who are causing a lot of harm, injury, pain with our tongues, with our actions to others. We are thorns instead of being roses. Tere gulistan mein sab gul hai, bas ek agar hoon to khar mein hoon.